मजलिस तृष्णा ताट मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीते नानका बहुते खटिय है बेकार।

आए मनमुख फूले देख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया।

खसम कढाए किरत कमावना मंदाक सैना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रुआवना जो दे

जन्म गवावे एक मूढ़ मुगध ना चेतह मूले जो आया तिस जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा

गुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम तिन चरण सरे वह हम लाग है तिन कै पाए राम हर हर चरण

जाए। एक रूप है पिर है विछुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले।

जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब तन तन। जिन हर भगत भंडार लहाया। श्लोक महला तीजा। सतगुर मिलिया।

जाए। सतगुर मिलै तन निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ते आया सुखदाता, दुख विसरिया।

नानक गुरमुख सदा सुख पावहै आनंदन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख धन धन है जिन्नी गुर उपदेश सुनया हर कन्नी गुर सत गुर नाम।

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने।

हाव जागत रहे तिन्नी प्रभ पाया शब्दे हो मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया।

चात्रक जल जो चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुपहाई।

ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाई। हलत पलत प्रभ

रहाउ। कस कुंकम चंदन गारिया, बिन नैनों जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक

दया पिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगम।

जपहो हर जपना हर संत चला हर नाले जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन।

चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे। तना श्री महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरा ना काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

होई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई, खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए।

नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रो पौड़ी सुपने से ती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया आर

हर कथा हर जस साध संगत सिउ एक मोहत न एव मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सिउ पाओ न कीनो नह सतपुरख मनायो तावत कौ ताव है बहु भांति ज्यों तेली बलद परमायो नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

तिलंग महला चौथा। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां। आए मिल गुर

हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसे।

सबमहे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई गुरमत सच पाइया।

हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जान पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत

नाम अखोट निदान है गुरमुखमन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन मुख बंध विचारे सोजन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनो

मन अभिमाना, कहत सुनत सभे सुख पावहे, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

मेल मिलाए, गुरमुख राते शब्द रंगाए, निज कर वासा हर गुण गाए, रंग चलूलै हर रस पहाए, इहो रंग कदे ना उतरै साच समाए।

बलिहारै बिलावल महला पंजवां बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।

मुक्ता बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचन आप ही करना आपन विभाव आप ही जरना।

आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

साध संग इस मन है उदारो मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया।

हूँ अवर काश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

पांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद नानक तिन

समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका बड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

हर हर उस्तत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै।

जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदिर आराम। हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया।

है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख हुआ सच वस्या मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सच्चो दहद स्पष्ट।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीद नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड। जे ओ 68 तीर्थ

पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझै बिद जाने उत्पुज चलत आप कर चीनै उत्पुज चलत आप कर चीनै आपे तत पछाणे ऐसा ज्ञान बिचारै कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकी गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ ना होई पुरख मह नार नार मह पुरखा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाओ। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय। जत कत पेखों हर गुनी।

फलत फलत होहे दोहे सुहेले, अचर्ज पुरख त्याओ रहा, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत, सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर समय

खिन महवेश करहे नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मो माया कै मगन भया करहे विकार विथार कन्हेरे सुर

ये कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

कहे नानक मुक्त हो वह जोगी साचे रहे समाए। राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई। संत हो गुरमुख दे वड्याई रहाओ सच रहो सदा।

आई। सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई। परम ना भूलो सतगुर सेवहो मन।

हाँ, नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा।

शंत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावै साचा। किस कारण रह तजो उदासी किस कारण इहो भेख निवासी। किस वखर के तुम वनजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर

तौ अकुलीन रहतौ शब्द सो सार, गौन गगन जब तब है न होतौ, त्रिभवन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण पेख असरूप सो एक।

नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पहाणे चलन अपने।

आपे सृष्ट उक्स आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच प्रगटिए सा सब किस सचो सच है।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै। दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, माथ तत कढ़ोलै। अंतर प्रगास

सुच संजम रवसस गहने दियों रे सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पियो रे निचार तार चुवै अत निर्मल एह रस